सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्म सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता हर्षावल संद्वा प्रसाद नमो नरकनासे सदावं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विबुदे परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्भाव मुते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्भंगी स्वरूपे।

भरण भिन्न भिन्न दी तुमरा लखाण जाए प्रसारा केहे बेद सजा प्रथम संसारा एक रूपानु स्वरूपा रंग भयो राव कई रूपा अंडा झेर जसे तकीनी परखान बहुर राजनी कहूँ फूल राजा हम बैठा कहूँ सिमट बह संगर कैठा सिगरी सिहत दिखाए चंबाबा जुगा सरू स्वंबाबा अब रक्षा मेरी तुम करो सिखी उबार आ सिख संगरो दुष्ट जदेठ उठवता उत्पाता सगल मलेश करो रनकाता जे अस तुज तब शरणी परे तनका दुष्ट दुगत हवे मरे पुरख जमन पापरे ते हारे तनके तुम संगर सबटारे।

भजल तर गया जोत समाणी जोत विच हर नाम समया सब आत्म राम पछाणिया भजल तर गया।